dancing and coming out in the light of the spirit. Mark the city with all its repose. दान देने वाले ने बख्शिश की थी मर्दानिया ए अमूल वस्तु पर बड़ी हैरानी है इससे देने वाला ही कोई

वस्तु मिल जाए साझा बैठ गया सब नाम को कीता सब कीर्तन कीता से सुनिया सपना हो जाएगा करो अरदास जिन्हें धरती पुटी है उन्हें पानी जरूर मिले जिन्हें धरती पुटी है उन्हें पानी मिले जिन्हें खोजिए है उन्हें मार्ग मिलता है जिस सिख ने मन जोड़ के अरदास की है ओदी अरदासा मेरा धन गुरु नानक पर पहले सेवक बोलेगा पीछे प्यार ना सारे बोलो।

என்ன சொல்லு பறவை தனுகுரு நாளுக்கு தாசி கதை என்ன சொன்னா குரு இத்தனை மிச்சா ஹே ஜிதர் வர்கே ரிஷே மே தர்ஷன் கரலே ஓ பி அம்ருத் ஹோ கயா உஸ் வேலே மே ஆஜ் பி அம்ருத் ஆஜ் பி யோ அம்ருத் ஹே ஆஜ் பி மிச்சா குரு தோ அட்டே தோ மிச்சா ஜிஸ் குரு தே தர்ஷன் கர ரஹே ஹோ வாணி படதே ஹோ கீர்த்தன சுன ரஹே ஹோ மன் மே தர் மிச்சா नफरत का जीवन सब तो घटिया जीवन नुकता जीवी का जीवन संपूर्ण नहीं है नुकता जीवी क्यों करिए भाई ये करनी एक बाबा जी पास संगत आई बाबा जी कहे लगे निंदा न करेगा करो भाई बाबा नंद सिंह जी महाराज जिन्होंने महापुरुषा ने श्री गुरु साहब को साक्षात गुरनाथ जारी की असं तो रोज पढ़ते हैं ना पर गुरुग्राम जी से बाबा जी ने मने जिन्होंने मने उन्होंने वास्ते साख्या बाबा जी कह लगे निंदा ना करे करो भाई एक प्रेमी उठ के खड़ा हो गया बाबा जी असी कलयुगी जीव असी तो निंदा भी करते हैं उचित भी करते बाबा जी कह लगे क्यों इन्हें क्या महाराज असि स्वार्थी बंदे हैं जिथों साडा मतलब हल हो जाए स्वार्थ पूरा हो जाए उनके परिवार के कोल बंदे ये बड़ा उपकारी है बड़ा दानी है बड़ा महापुरुष है अंदर का मन भावे जानता हो दूस करैक्टर एदा करैक्टर चंगा नहीं पर ही स्वास्थ्य चंगा कह लग जाने हैं साडा मतलब पूरा हो दूजे पास असी चिकड़ सुटन लग जाते हैं और बुरा कह लग जाते हैं जेदे को साडा मतलब पूरा ना अंदरला मन जानता हो नेक इंसान इस कोई गलती नहीं पर इस वास्ते क्योंकि साडा मतलब हल नहीं होया इस वास्ते निंदा कर क्योंकि दुनिया दो रंगी है दुनिया दो रंग हजूर एक दिन लेते हुए सन किराने बात की हुई मरदाने नाल मिठे मिठे वचन पे करते सन और जिम्मेदारा दिया लड़कियां कामिया रोटी देन वास्ते जा रही सन एक ने कहा दूजी नी भैने वेख घर बार छड़िया है साल बनिया है ते अजे भी सराने पाल लगे हजूर ने अपने सराने बांह की हुई किसी ने बीबी ने वचन किया तो सतगुरां ने वो जी बांह सी अडोल कूजी कह लगी वेख जी भैने तेरी गल का कितना गुस्सा किया है अजूर मुस्कुरा पे कह लगे वो मरदाने दुनिया किसे पास नहीं छ आखो श्री भाई किसी पर दुनिया बाबा जी कह रहे सन मकान भी नहीं एक होती है पर दुनिया दिया दो नहीं आखो देखिए दो नहीं है जे चिटे कपड़े पा लो ये तो बड़ी आकड़ होगी जे मेरे पा लो कहते भुखा मरन लग गए हैं दो नहीं है जो दो नहीं तो प्यारी सात संग पे उस प्रेमी ने किया बाबा जी जिन्हे को मतलब हल हो जाए ओदिया तरीफा जिन्हे को सवाल पूरा ना आवे चंगी भी सक साडा तो सुभाव बने अमानंद जी महाराज कह लगे चंगा फिर उत्सुत भी करया करो ते निंदा भी करया करो बाबा जी एक ही बचन उत्सुत भी करिए निंदा बाबा जी कह लगे तुहाडा सुभाव बन गया है ना करया कर सारी संगत हैरान होगी नहीं आज कोई सोच नहीं पाओ बाबा जी कह लगे ये तुहाडा सुभाव बन गया उसत निंदा करना जे निंदा करनी है तो अपनी करो सुभाव बने जे निंदा करनी है अपनी करो सब अवगुण में गुरमी ये गुरमुख लिखा कबीर जी गुरमुख सन कहते कबीर हम सबसे बुरे असि बुरे होके चंगे बनने की कोशिश कर पर चंगे बनना यह सब तो पहला निशाना है जिन्हें डालियां फल लगते हैं वो जुड़ी है कबीर जी ने कहा कबीर हम सब से बुरे हम तक भरो सब कोए जिन ऐसा कर हूं दिया मीत हमारा बाबा जी कहने लगे अपनी निंदा कर अपने कर्मों की निंदा कर जी उसत करनी है तो मेरे धन गुरु नानक जी साहब भी उसत करें करवाए करी पढ़िए ना उस्तत कर कर जीवा जी मैं उस्तत कर कर जीवा उस्तत कर कर जी

निर्मूल कीरा आनंद गुणी जगीरा अनहद पाणी पूंजी संतन हथ राखी मरदानिया के ये समूल वस्तु ना मुल बन इस वस्तु का मुल बन पर उन्होंने कीर्तन का पूरा नाम प्राप्त नहीं होता जिन्होंने कीर्तन रबी दास समझ के इसका आदर सत्कार किया है मरदानिया उन्होंने चोरियां मालिक पर मरदानिया है कि महाराज एक सौ रुपये भी है अरुण कह लगे आप करनी है मरदाने जा वापस दे महाराज अपन बना के मरदाने ने किया सदगुरु मसा मसा माया का मूह वेखे है तुम कहते हो वापस अदूर कह लगे मरदानिया आप किसे चुकी फिरांगे मरदाने ने क्या महाराज तुम थोड़ा चुकनी मरदाना आप ही चुकी फिरेगा इतने जाओगे दो बड़ी कीर्तन सुनावे हम थानू कदे नहीं कहांगा महाराज भुख लगी अदूर कह लगे जी मरदानी असि मालिक के हुक्म जिथे जावे मालिक आपे प्रबंध करेगा वापस दे पले चू न बंदे पंछी से दरवेश और जिन्होंने तकवा रखता तिना रिजिक गिरी गांठनी बंधते जमे देवता खाए गोविंद ताके पीछे जिने मत भूखे दे जाए एक सौ रुपये की थैली वापस दी सात राज अंदर होर प्यार आया नौकर नु बुलाया धरका कोई रबी दूर आया है और ही सौ सुन के मन धरे है प्रसादे का थाल परोसना मिठाई भी रख लै दुधा दरबार भी भर लै चिट्टा रुमाल पा के पूछा दे मैं दुकान बंद करके आऊंगा हाँ तो उस दादे के दर्शन करना चाहता अदरका पहुंच गई पहला दिन के पदार्था का थाल रखिया मथा टेकिया हजूर ने अभी उसी न सकिया सिर को नजर करम तिरकार नानक नगरी अगर कहदिया झोलियां पर उठिया मस्ती बैठा चाहता है इधरों सारे भी आए अजूर ने दर्शन किए मन खरे हाथ जोड़ के किया गरीब नवाज दुनिया उतारवा रहा दुनिया दाता देने वाले मेरी झोली की है अजूर कह लगे सारसराय की चाहना है साक्षा दुनिया भी दाता सारी है हीरे दान पन्ने पुखराए अंदौल सोना चांदी सब कुछ है पर गरीब नवाज सब कुछ होंगे अजे मन का खप्पा पूरा नहीं होया खुश ही बने मन नहीं रही मन संतुष्ट नहीं है मन तो संतुष्ट ही नहीं हजूर कह लगे हां सात राय मन का भोजन हो रहा है मन ये नाल नहीं रहना मंत्र मन पदार्था नाल नहीं रहना गरीब नवाज फिर करो कृपा अजूर ने सोचिया जरा तकिए अंदरों बोलता है कि भर अजूर कह लगे सारसराय तू देरी नाल आया है जेडी दात सी ना वो तेरा नौकर है महाराज फिर मैं अजूर कह लगे जे तो भी दात लेनी है तो नौकर दे चरणा ते है ऐसी कसौटी इम्तहान देखना से भी अंदर निमरता लैके होवे तां नहीं पर सारसराय का जेड़ा मन रूपी चोलिया सी वो बिल्कुल सफेद अंदर शरदा से प्यार की रो पिया हरी परिवार ए तो मेरा बच्चा है पर जे तुसी आखो तो मैं थोड़े कुत्तियां ने पैर चमका सकिया तो दास बख्शो मेरे नाल मेरे मन भी सुख दूर हो अजू ने बख्शी पीती सासरा जरा नेड़े हो दात मिलन लगी है तुसी भी मन करके नेड़े हो जाओ बख्शिश होने लगी है हजूर ने सारसराय के सिर से देर प्रयास रखिया अभी उसकी की नाल तकिया किया सारसराय जब सतनाम हुकुम मस्तक हाथ विचों मार कड़िया बरियाइया सह सुखे नाम नाम की दात जो जो सारसराय सिमरन नाल जुड़ा है त्यों त्यों मन सुखी होता है सिमर सिमर सिमर नाम जीवा तन मन हो निहला चरण कमल तेरे तोरे तो पीवा मेरा सतगुरु तो अज सारस राय दोलियां कर दिखा मेरे सतगुरु नानक ने क्यों ना पे अज खास पूर्व भाषी का दिन आखोशी ही पे सारस राय दोलियां भरिया गई थोड़े उत्ते ही रहमत सूरज की किरण जिथे जाएगी अनेरे को दूर करनी जाएगी गुरु की मेह जिथे जाएगी चोरियों पर तो आओ प्यारी आप अनुभव करें।
सर्वत्र माई पढ़ाई जो अमृत वेले भी है।

हजूर की प्राप्ति होगी, फिर हारिया जाता है, किसी की भी काट नहीं रहेगी जिन्होंने।

तेरी ये जवानी को मला जावेगी, थोड़े दिन ने बंदगी कर ले, क्यों के पता नहीं मौत ने केड़े वेले आना।

जे पूछिए भाई तू क्यों रोना है, ते रोन वाला कहेगा मेरा कुछ सज्जन मेरा प्यारा सौंगे है, ते क्या उठ पवेगा रोन दी केड़ी लोड़ है। ता जवाब दिता उस सुता एहो जी जगह है जिथों कदी कोई उठ के नहीं आया, सज्जन मेरे रंगले जाए सुते जीरान, जीरान कहते ने कब्रस्तान, कब्रस्तान जाके सौ गए ने जिथों कदी कोई उठ के नहीं आया। ऐ भाई एक दिन सारिया ने उत्थे सोना है, फिर क्यों ना

संग नरक पर हरे। साध के संग इहा हुआ सुहेला, साध संग बिछरत हर मेला। जो इच्छा सोई फल पावे, साध के संग न बिरथा जावे। पार ब्रह्म साध हृदय बसे, नानक उदरे साध सुन रसे। साध के संग सुनो हर नाओ, साध संग हर के गुण गाओ। साध के संग न मनते बिसरे, साध संग सर पर निस्तर है। साध के संग लगे प्रेम मीठा, साधु के संग कट कट ढीठा। साध संग पै आज्ञाकारी, साध संग गत पई हमारी। साध के संग मिटे सब रोग, नानक साध पेटे संजोग। साध की महिमा वेद न जाने, जेता सुने ते तब ख्याने। साध की उपमा तै गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर। साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा ऊंच ते ऊंची, साध की शोभा मूच से मूची।

जब नामे भगत ते आया, रविदास भगत के कारने पाथर नदी तराया। तन्ना जट जब मरने लगा, पत्थर स्यों प्रगटाया, बन के आप कबीर जुलाहा,

मिल है सारंग पानी, राम कबीरा एक भय हैं, को ना सके पहचान नाम जप के, राम ते कबीर विच कोई भेद ही ना रह गया। बल्कि कबीर जी कहंदे हन के कबीर मन निर्मल भया, नाम जप के जदों मन निर्मल हो गया ता मैनू रब लभण दी लोड़ ना पई, रब मेरे मगर मगर तुरिया आया, मैनू लभदा तुरिया।

ने मेरे समेत अपने ते लेनी गल। महात्मा बुद्ध कहंदे कोई गाहक बने ते सौदा दे ना धक्के नाल की करा हक सटना तू सौ घर गए सारे ने तेनू क्या भी मंदिर किस वास्ते जाने फिर जिस वास्ते जाते ओ ही मिलना ना दाते नू मंगदा ही कोई कोई है। मांगना मांगण निका हर जस गुरते मांगना अरदास करो। साड़ी खास ओ सच्चे दाते नाल जुड़ जाए तू विसरे दुख बहुता लगे तू ना विसरी आखो सतना एक तिल प्यारा विसरे रोग वड्डा मन माए गुरु नानक साहब प्रसन्न होए कहण लगे शुक्र है एदा गाह की कोई विरला होंदा बाबा बुढ़ा जी 8-9 साल की उम्र सी ते प्रशादा ही लिया सी ना ते सतगुरु ने रसना नू ला के कहा सी तृप्त हो गए हां उन्हें आख्या बाबा आत्मा किवें तृप्त हो गए गारी के आखो सतमा बाबा जी हैरान रह गए कहंदे होए सारी दुनियावी गल्लां करदे तू अध्यात्मक गल उम्र ते छोटी है पर गल्लां बड़े वर्गियां बाबा बुढ़ा जी बने जितनिया भी बीबियां वीर बैठे हो मेरी भी अरदास करो अपनी भी करो अध्यात्मक मंजिल दे विच भी किथे पिछे हां अगली पौड़ी भी अरदास करया करो इधर भी खोज रख्या करो

सदगुरु कृपा करे, बख्शिश करे। गुरबाणी की पंक्ति सानू कहती है इहदे बारे।

शिमब्रस्त वेद पुराण पुकारन पोथियां नाम बिना सब कूड़ गाली होशी नाम तो बिना मनुख सखना है इसलिए महाराज ने नाम अमृत सानू बख्शन लई सब तो पहला पंज बाणिया दा अमृत खंडे बाटे दा अमृत तैयार करके साडे मुख विच पाया अमृत ते आख्या ऐ गुरु के सिख हुण जदों तू गुरु के शब्द दी कमाई करेगा ना तेरा मन निर्मल हो जाएगा जितनी कोई मुशक्कत कालेगा आप ही नहीं सारा कुटुंब ही तार के दरगाह नू ले जाएगा इसलिए महाराज बख्शिश कर रहे हैं भाई अमृत पियो ये बचन अपने पले बनांगे ता लोक परलोक

गोविंद राय जी कुछ वड्डे होए, चार पांच साल दे लगभग आप दी उम्र रोज छोटे छोटे बच्चियां नू नाल लैके ते गंगा दे किनारे खेलने जाऊंदे सन। इस गंगा दे घाट ते शिव दत्त पंडित नाम करके एक पंडित तपस्या करिया करदा सी। 70 साल दी जिस दी उम्र श्री रामचंद्र भगवान जी दा उपासक सी, रोज मूर्ति श्री रामचंद्र जी दी अगे रख के प्रसाद अगे रख के अरदास करदा सी, हे भगवन भोग लाओ। और इस शिव दत्त पंडित नु एक बार अपना दर्शन दियो प्रभु, रोज अरदास करे कि इतनी मेरी उम्र हो गई, हुण मैं बुढ़ा हो चलिया हां, एक बार अपना दर्शन करा दियो। किते ऐसा ना होवे कि तेरे दर्शन कीतियां बगैर ही इस देही विचों प्राण निकल जान। सात सिगत बोलो श्री। और फिर मैनू आ तेरे दर्शना वास्ते फिर जन्म लेना पड़े, हे मेरे प्रभु एक बार दर्शन कराओ। आज जदों अरदास कर रहे है किस दी अरदास, क्योंकि बिरथी कदे ना हो वही जन की अरदास। जदों कोई मन नाल प्रेम नाल अरदास करता है ता उसकी अरदास प्रभु दे चरणा विच पहुंचदी। गोविंद राय जी खेडदे हुए आ गए ते पंडित शिव दत्त नु वेख्या के बेनती कर रहे है, प्रभु भोग लाओ, प्रसाद अगे रखिया, लड्डुआं दा थाल भगवान श्री रामचंद्र दी मूर्ति अगे अरदास विच जुड़े है। ताई गोविंद राय जी ने आके थाल विचों एक लड्डू चुक के मुंह विच पा लिया। पंडित शिव दत्त ने देखिया कि कोई बालक है और थाल विचों प्रसाद दा लड्डू चुक के मुंह विच पा लिया, ता पंडित शिव दत्त नु बड़ा क्रोध आया। कहन लगा तू कौन है और मेरी पूजा विच विघ्न पा रहे है, जा चला जाए ते फिर कल या दोबारा आके मेरी पूजा विच विघ्न नहीं पाऊंगा। साहब जी चले गए बच्चियां नाल खेडदे हुए गोविंद राय जी अगे। अगले दिन पंडित शिव दत्त फिर जदों पूजा विच जुड़िया और अरदास कीती, भगवान भोग लाओ, गोविंद राय जी फिर खेलदे हुए आए ते फिर थाल विचों लड्डू चुके मुंह विच पा ले। सात सगत बोलो श्री। अज पंडित शिव दत्त बड़े गुस्से विच गोविंद राय जी दे पिछे पिछे दौड़िया पकड़न वास्ते, अगे अगे गोविंद राय जी, पिछे पिछे पंडित शिव दत्त। गोविंद राय जी दौड़दे होए माता गुजरी दी गोद विच जा बैठे, कहन लगे मां जी आ पंडित सानू गुस्सा करदा। ताई पंडित शिव दत्त भी आ पहुंचिया, कहन लगा ए तुहाडा लाल है? हां मेरा लाल है। पंडित जी हुक्म करो की गल है, माता गुजरी ने पुछया। ता कहन लगे अज 2 दिन तो मेरी भगती विच विघ्न पा रहे, मैं प्रसाद रखदा हां भगवान राम जी दी मूर्ति अगे के प्रभु भोग लाओ ते ए थाल विचों लड्डू चुके मुंह विच पा लैंदा। ता गोविंद राय जी कहन लगे मां जी असी ता इहदी भगती विच कोई विघन नहीं पाउंदे, ए आप ही रोज कहिंदा भोग लाओ ते असी जदों प्रसाद चुके भोग लाया ते सानू गुस्से करदा। सात सगत बोलो श्री। पंडित शिव दत्त बड़े क्रोध विच कहन लगा मैं तेनू ता नहीं कहिंदा भोग लाओ, मैं ता अपने इष्ट श्री रामचंद्र जी नू कहिंदा हां भोग लाओ, ते जे कल तू आया और मेरी भगती विच विघन पाया ता फिर मैं तेनू देख लवांगा। उसे नाल बोल के पंडित शिव दत्त चला गया। तीजे दिन मुड़ गंगा दे किनारे जदों आके भगती विच जुड़िया ते थाल प्रसाद दा अगे रखिया ते बेनती कीती कि हे भगवान भोग लाओ, गोविंद राय जी फिर बच्चियां नाल खेडदे आए ते फिर थाल विचों लड्डू चुके मुंह विच पा लिया। अज पंडित शिव दत्त ने गोविंद राय जी नू बांह विचों पकड़ लिया, आख्या 2 दिन तो मेरी भगती विच विघन पा रहे, अज नहीं छड़ना। कोल पई सी सोटी, सोटी चुके ज्यो गोविंद राय जी नू मारन वास्ते चुकी ता गोविंद राय जी ने चट अपना रूप भगवान श्री रामचंद्र जी दा बना लिया। सात सगत बोलो श्री। पंडित शिव दत्त वेख के हैरान रह गया, भगवान श्री रामचंद्र जी जिन्हां दा मैं उपासक इस बालक विचों मैनू

इम्तिहान लिता अपने पुत्रां दा भी और अपने सेवादार भाई लैणे दा भी, क्योंकि पता सी कि आ जो गद्दी है इस ते ओही बैठ सकता है जो इस गद्दी दे लायक होवे। सात संगत बोलो श्री, और बिना कसौटी ते परखे होए, बिना परीक्षा लिते होए, आ किवें पता लगे कि इस गद्दी ते बैण दा कौन हकदार है। एक दिन गुरु नानक सच्चे पातशाह ने विराट रूप धारिया, अगे अगे गुरु नानक सच्चे पातशाह, मगर मगर संगतां, मगर मगर संगतां नूं आउंदियां वेख धन गुरु नानक सच्चे पातशाह ने पिछा तकिया ते आखिया, साडे पिछे की लैण आए हो, जाओ मुड़ जाओ घरां नूं सारे। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने नदर कीती, माया दे ढेर ला दिते, आख्या साडे पिछे आओगे तां कुछ नहीं जे मिलना, आ माया चुको ते जाओ करां नूं। जिन्हां ने माया तकी ओ माया दी चोलियां भर के वापस चले गए। थोड़ी दूर जाके साहब जी ने फिर मुड़ के वेख्या जे कुछ संगतां होर आ रही हैं। सात संगत बोलो श्री। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने नदर कीती, चांदी दे ढेर ला दिते, आख्या भाई आ लो चांदी लो ते जाओ करां। जेड़े पैसे ते नहीं फिसले सन वो चांदी ते डिग पे, चांदी चुक के कई होर भी तुर गए। साहब जी थोड़ी दूर होर गए, फिर परत के वेख्या जे कुछ संगतां जे आ रही हैं पिछे पिछे। साहब जी ने नदर कीती, सोने दे ढेर ला दिते, सोने दी मोरां ढेर लग्या, आ जेड़े पैसे ते नहीं डिगे, चांदी ते नहीं फिसले, और सोने दी मोरां वेख के उना दे मन गुरु नानक नू छड़ गए। सोने दिया मोरां चुक के घरां नू चले गए। साहब जी फिर खड़ा जागे गए, फिर पिछे परत के वेख्या अजे थोड़ी जी संगत आ रही है। तां गुरु नानक सच्चे पातशाह ने नदर कीती ते हीरे जवरातां दे ढेर ला दिते, आख्या लो वही हीरे जवरात आ लै के चले जाओ करां नूं, साडे पिछे आओगे तां कुछ नहीं जे मिलना। जेड़ी संगत थोड़ी बहुत रह भी गई सी ओ हीरे जवरात झोलियां विच भर के अपने अपने घरां नूं चले गए। थोड़ी दूर गुरु नानक सच्चे पातशाह फिर गए, हुण परत के वेख्या तां इक पिछे भाई लैणा जी आ रहे हैं। साहब जी ने पुछया लैणिया तू नहीं गया वापस, माया दे ढेर लाए, सोने चांदियां दे ढेर लाए, हीरे जवरातां दे ढेर लाए, आ सारे ही झोलियां भर के घरां नूं मुड़ गए, तू नहीं गया। भाई लैणे जी दियां डुब डुब अखां भरियां, कहण लगे गरीब निवाज आ सारे जो झोलियां भर के घरां नूं चले गए हन, इन्हां दा पिछे कोई ना कोई है, लेकिन मेरा तां इक तू ही है, मेरा तां तेरे बिना होर कोई नहीं है, मैं तेनू छड़ के नहीं जा सकता। सात संगत बोलो श्री। गुरु नानक सच्चे पातशाह नदर हेठां लै आए लैणे नूं, आख्या अच्छा हां गरीब निवाज आ जितने मुड़ गए हन इन्हां दा कोई ना कोई सी ना पिछे, मेरा तां इक तू ही है। तां साहब जी ने आख्या चंगा लैणिया ओ सामने आ मुर्दा पिया है, उत्ते चिट्टी चदर पई है, आ लैणिया जे हुक्म मनाई तां पहले इस मुर्दे नूं खा। भाई लैणा जी सत बचन करके, क्योंकि एक सत बचन दी पढ़ाई भाई लैणे जी ने पढ़ी, जा खड़ोते ते पुछया हाथ जोड़ के गरीब निवाज फिर हुक्म करो किस पासियों दी खावां, पैर वालों के सिर वालों। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने क्या लैणिया जिथों तेरी मर्जी, ते जदों हुक्म मन के जदों चदर चुकी तले कड़ा प्रसाद दी देग पई सी। सात संगत बोलो श्री। हुक्म मनिए होवे परवान, ता खसमे का महल पाए सी।
साहब जी ने भाई लहणे नूं कोल सदिया, अपने हिरदे नाल ला के भाई लहणे को अंग से लगाकर अंगद कर दिया, अंगद थापिया और आख्या लहणिया मेरे बाद इस गद्दी दा हुण वारस, इस गद्दी दा मालक तू है। इस वास्ते भाई गुरु नानक दे दर दी सेवा जे किसे ने मनोकामना करके कीती उसकी तो मनोकामना पूरियां होईयां, और जिन्हां ने गुरु नानक सच्चे पातशाह दे दर दी सेवा निष्कामता दे नाल कीती ओ गुरु नानक दे घर दे मालक बन गए। इस वास्ते साहिब पंजवें पातशाह बख्शिश कर रहे हन और की कहिंदे हन।